ज्येष्ठ द्विगते शनिवार शनि जयंती पर्व के दिन शनिधाम दर्शन करौं शनि जयंती उत्सव में सहभागी बनौ र सफल पारौं।

अप्लायन्सर को खरीद में कैश बैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: सीजी का टीवी एंड होम अप्लायंसेस को खरीद में आकर्षक कैशबैक तथा पक्का उपहार। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एसी में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भए पुग्छ, सीजी एलएक्स ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ।
1: न्यू ईयर न्यू फाइभ स्मार्ट लाइफ।
2: यो नयाँ वर्षको अवसरमा माइडियाका विभिन्न होम अप्लायन्सहरूको खरिदमा आकर्षक उपहार तथा क्याशब्याक, साइड बाइ साइड तथा मल्टिडोर रेफ्रिजरेटरमा फ्री इन्डक्सन, फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा फ्री 6 केजी एरियल, टप लोडमा फ्री 2 केजी एरियल, सेमी अटोमेटिकमा 1 केजी एरियल, डिस वासरमा वासिङ ट्याब्लेट र माइक्रोवेभ ओभनमा कुकिङ किट, हरेक खरिदमा सर्ट सर्ट किट र बम्परमा माइडिया 519 लिटर रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका। नागरिकता भए पुग्छ।

0: दक्ष चिकित्सक अत्याधुनिक प्रविधि तथा संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सहित को पुष्पांजलि अस्पताल अब भरतपुर 10 बाल मंदिर रोड में
1: अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर आईसीयू लैब सुविधा न्यूरोसर्जन सहित विशेषज्ञ डॉक्टर हरपुर 10 बाल मंदिर रोड एयरपोर्ट नजिक फोन 0956493580 मोबाइल 98550426440
0: तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता।